0: आशा भोसले और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम आपकी परछाइयां। नवजीवन, नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही बांसुरी की आवाज, ऐसा सुंदर संयोग उस भोर को और भी सुहाना बना देता है। और राधा जी कह रही, बांसुरिया फिर से बजाओ कान्हा। सुनते हैं ये सुंदर गीत।
1: बांसुरिया फिर से बजाओ।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत ताज फिल्म से अभी आपने सुना। 1956 रिलीज ये फिल्म हेमंत

कुमार का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। मित्रों, प्रकृति हमें बहुत सारे संदेश देती है। ये नदियाँ, ये समंदर, पहाड़, झरने, हरियाली, बाग बहार, पत्ते, सभी कुछ न कुछ संदेश लिए हैं। संदेश जीवन को जीवंत रखने का, जीवन को अच्छे से जीने का और दूसरों को भी अच्छे से जीने देने का संदेश।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत लाजवंती फिल्म से अभी आपने सुना। 1958 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। मित्रों, प्राकृतिक नजारे हम सभी को भाते हैं। ये नजारे हम दूर पास इसके लिए पर्यटन भी करते हैं, इन नज़ारों को देखने के लिए, आनंद लेने के लिए, महसूस करने के लिए।

और इन नजारों में ऊंचाई से बहता झरना हम सभी को अपनी फुहारों से भिगोता है और जीवन का संदेश भी देता है।

आदमी और इंसान, इस फिल्म से अभी आपने ये तराना सुना। 1970 रिलीज ये फिल्म, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें थी, रवि का संगीत, साहिल लुधियानवी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना एक ही रास्ता फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1956 में। हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। कार्यक्रम में एक और गीत, साथियों भोर सुहानी हुई, पंछी पक्षी सभी जागे, इंसान भी चले अपनी अपनी राह पे अपने अपने कार्य की ओर, उन्हीं में से एक ये भी।

काले रंग दा। मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना घर की लाज फिल्म से। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, रवि का संगीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। इसी रचना के साथ आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arkel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: FM Rainbow 101.9।
1: A very good morning हैदराबाद। उम्मीद है आप सब एकदम किर्राक एनर्जी के साथ आज की सुबह शुरू कर रहे हैं एंड ए बिग हेलो टू यू ऑल। साथ ही उन सभी माली दोस्तों को एक प्यार भरा नमस्कार जो सुबह शाम हमारे हैदराबाद के पार्क्स और गार्डन्स को हरा भरा रखते हैं। आपके प्यार और दिए गए पानी की वजह से ही तो ये पौधे मुस्कुरा रहे हैं भाई। यू गाइज आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम सब की तरफ से और उन पौधों की तरफ से भी। वैसे दोस्तों आप भी तो मुस्कुराते रहेंगे बिकॉज यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद से विद मी आरजे रानी श्रीराम।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक। गीतों के संग हमारा ये सफर यूं ही बरकरार रहेगा। एंड ओ बॉय, क्या जबरदस्त सुबह है। कैन यू फील दोज फर्स्ट रेस। दिन में गर्मियों की धूप कितनी भी भीषण क्यों ना हो, पर सुबह की वो वार्मथ, वो पीस और साथ में हल्के से चलने वाले हवा के झोंके, कसम से इट्स लाइक अ वार्म हग फॉर द सोल, राइट? पर चलो, अब बहुत हुआ टाइम टू शेक ऑफ दैट नींद वाली फीलिंग एंड गेट आवर हार्ट्स पंपिंग। लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट लव ऑफ द डे। नो, काफ़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एब्सोल्यूट बेस्टी। सुबह उठते हैं, इवन बिफोर ब्रशिंग, सबसे पहले किसे चेक करते हैं हम लोग? वही मेसी हेयर लुक इन द मिरर, राइट? जी हाँ, सुबह के बिखरे बालों से लेकर वो कॉन्फिडेंट, अरे यार तू तो स्टार है वाला विंक जो हम खुद को देते हैं बिफोर अ बिग मीटिंग, ये हमारा अल्टीमेट साइलेंट पार्टनर है। एकदम सच्चा दोस्त जो कभी झूठ नहीं बोलता, है कि नहीं? यस माय डियर लिसनर्स, इट रिफ्लेक्ट्स आवर ब्राइटेस्ट स्माइल्स, आवर डीपेस्ट सीक्रेट्स, एंड या इवन दोज ओन नो पीपल्स टू। इट्स द ओनली थिंग दैट रिप्रेजेंट्स अस विदाउट एनी फिल्टर्स, द रॉ एंड रियल। पर दोस्तों, क्या कभी सोचा है ये नाजुक सा आईना सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखाता है, बल्कि ये बताता है कि हम लाइफ के कर्व बॉल्स को, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। होल्ड दैट थॉट, आईना देखना बंद कीजिए। आई नो अब आप अभी भी अपने बाल सेट कर रहे हो। लेट्स गेट मूविंग विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक।

वेलकम बैक। एंड कैसे चल रहा है सर? स्टिल विथ मी? ऑफ कोर्स यू आर। आखिर हमारी और आपकी वाइब जो है परफेक्ट मैच होता है। पता है, सडनली एक रैंडम बात याद आ गई। जब मैं छोटी थी ना, मेरे कमरे में छोटे छोटे स्पैरोस आ जाते थे, एंड आई एम नॉट किडिंग, वो मिरर को अपनी चोंच से मारने लगते थे। घंटों तक वहाँ बैठे रहते, प्लेइंग विद देयर ओन रिफ्लेक्शन। बहुत मज़ा आता था उन्हें देखते हुए। ऑनेस्टली आजकल ये सब दिखता ही नहीं ना। या इट्स जस्ट ए लिटिल ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। एनीवे, आई एम सो हैप्पी टू बी हैंगिंग आउट हियर विद यू। और यार, कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब हम अंदर से बहुत टूटा हुआ फील करते हैं, फील लाइक वी आर टोटली फॉलिंग अपार्ट। लेकिन ट्रस्ट मी, हम बिखर नहीं रहे, हम मजबूत हो रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि इन दरारों से, इन क्रैक्स से कैसे चमकना है। वी स्टार्ट कैचिंग द लाइट इन वेज वी नेवर कुड बिफोर। सच कहें तो हम जितने दिखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा टफ हैं। मान लो वी आर नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग द वर्ल्ड, हम तो डबल फायर के साथ चमक रहे हैं मेरे दोस्त। उस चमक को यूं ही बरकरार रखिए। विल बी राइट बैक सून, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 MHz पर।

0: FM Rainbow 101.9.
1: And now the time by the studio clock is 11 hours and 10 minutes. बातों बातों में वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला. बिल्कुल. So finally हम सीख रहे हैं इन cracks से कैसे चमकना है. And catching the light like never before. Honestly, हैदराबाद वाले हैं हम. We are tougher than we look. हम सिर्फ दुनिया को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे डबल फायर के साथ चमक के दिखा रहे हैं. सो अगर आप आज थोड़ा बिखरा हुआ या फिर अंडर द वेदर फील कर रहे हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए. डोंट इवन स्वेट इट, क्योंकि आप ब्रोकन नहीं हो मेरे दोस्त. आप सिर्फ अपने पावर अप फेज में हो. यू नो, हर एक क्रैक से आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा निखर के बाहर आती है. अपने रियल सेल्फ को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि आपकी असली ताकत वही छुपी हुई है. सो कम ऑन, लेट्स कीप आवर हेड्स हाई, कैच दो सन रेज और दिखा देते हैं दुनिया को कि हम चीज़ क्या है. अब नेक्स्ट, हाई वोल्टेज एनर्जी को बरकरार रखते हैं विद दिस ट्रैक दैट्स एज अनस्टॉपेबल एज यू आर. स्टे वाइब्रेंट हैदराबाद एंड कीप इट लॉक राइट हियर ऑन FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे रानी श्रीराम.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आजय अभिज्ञा। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिया के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। 18 मई 1974 एक ऐसी तारीख है जिसने इंडिया को दुनिया के न्यूक्लियर पावर्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि आज हम हिस्ट्री, साइंस, पेट्रियोटिज्म और सस्पेंस का एक जबरदस्त सफर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस गाने के बाद।

Welcome back, listeners. You are listening to Akashwani 101.9 FM. तो हम बात कर रहे थे स्माइलिंग बुद्धा के ऑपरेशन के बारे में. दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस किया. पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन की पहचान है. इसी विजन के साथ इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी पर काम शुरू किया और यहाँ एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा. उन्हें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी माना जाता है. उन्होंने ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल निभाया. शुरुआत में इंडिया का फोकस पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी पर था, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट. लेकिन 1962 का इंडिया चाइना वॉर और 1964 में चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया के लिए एक वार्निंग सिग्नल था. इंडिया को रियलाइज हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी जरूरी है. उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था. अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर रेस ऑलरेडी दुनिया को डरा रही थी. चलिए इसी सस्पेंस को आगे बढ़ाते हुए अगली ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM in the studio clock. Time is passing by 11:39. So, हाँ, हम बात कर रहे थे स्माइलिंग बुद्धा के ऑपरेशन के बारे में. ऐसे एटमॉस्फेयर में इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन स्ट्रांग करनी थी और फिर आया वो मोमेंट जिसने हिस्ट्री बना दी. दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया? 18 मई 1974 के दिन बुद्धा पूर्णिमा का दिन था और जब टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो रिपोर्टेडली मैसेज भेजा गया, बुद्धा इज स्माइलिंग. बस वही लाइन ऑपरेशन का कोड नेम बन गया, स्माइलिंग बुद्धा. सुनने में पीसफुल लगता है, लेकिन दुनिया के लिए ये एक न्यूक्लियर सरप्राइज था. इंडिया ने ऑफिशियली इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा. 1974 के बाद इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी कंटिन्यू रहा और फिर 1998 में पोखरान 2 टेस्ट हुए.

टेस्ट भी राजस्थान के पोखरान में कंडक्ट किए गए थे। दोस्तों, आज हमने जाना इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर के बारे में, स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974, एक ऐसा दिन जब इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि डिटर्मिनेशन, साइंस और नेशनल विजन मिलकर हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सैल्यूट टू ऑल द साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सोल्जर्स और लीडर्स जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना।

टू ऑल द साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सोल्जर्स और लीडर्स जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना।

नमस्ते, हेलो आदाब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे रानी श्रीराम, और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद से। हमारा ये सफ़र यूं ही चल रहा है मेरे दोस्त, हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हुए वहाँ से लेकर एक HIV-free गोल्डन फ्यूचर बनाने तक, एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स भी। दोस्तों, आज की कुछ और खासियत है, आज है मई 18, यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जिसे HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, जब एड्स की कोई वैक्सीन बनी ही नहीं तो फिर हम ये डे क्यों मना रहे हैं। आई टोटली गेट योर पॉइंट। नॉर्मली हम कोई डे तब मनाते हैं जब हमारे हाथ में कोई जीत होती है, बट दिस डे इज़ नॉट अबाउट द विक्ट्री, इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप। ये दिन उस जज्बे का है जो हार मानने को तैयार नहीं है। तो आज हम सब मिलकर उन सभी वैज्ञानिकों और बहादुर वॉलंटियर्स को एक बड़ा सा थैंक यू बोलते हैं, और दिल से सलाम करते हैं उन्हें जो लैब्स में और वैक्सीन ट्रायल्स में दिन रात एक कर रहे हैं। मैच इज टफ, बट इट्स नॉट ओवर येट। और हमारी ये तालियां मैदान में डटे उन हीरोज का हौसला बढ़ाएंगे, बिकॉज कीपिंग द होप अलाइव इज एवरीथिंग। तो मीठी मीठी बातों के साथ साथ कुछ काम की बातें भी होती रहेंगी। यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ, यानी आपकी अपनी दोस्त के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की

0: दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his 2-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations.

वेलकम बैक। मैं हूँ आरजे रानी श्रीराम और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9। दोस्तों, सवाल यह है कि ये एचआईवी वायरस आखिर साइंस को इतना बड़ा चैलेंज क्यों दे रहा है। सी, एचआईवी एक शेप शिफ्टर है, इतनी तेज़ी से रूप बदलता है कि जब तक साइंस इसके लिए वैक्सीन बनाती है तब तक ये अपना स्ट्रक्चर ही बदल लेता है। लेकिन बॉस, ट्विस्ट अब आएगा। अच्छा, क्या आपको केरलम वाली वो न्यूज़ याद है जहां एआई ने 30 इयर्स पुराने केस में एक क्रिमिनल का चेहरा पहचान लिया था? हाँ, अब सोचिए, अगर ये इतना शातिर क्रिमिनल ढूंढ सकता है तो क्या वो इस चालाक वायरस को नहीं पकड़ पाएगा? आप भी वही पूछने वाले हैं ना, पता है मुझे। जी हाँ, अब इस वैक्सीन की खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। ये AI एक ऐसे सुपर डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो वायरस के हर बदलते रूप को पहले ही भांप लेता है। इट्स लिटरली अ डिजिटल हंटर चेजिंग द वायरस। तो उम्मीद की रखिए, साइंस एंड AI आर टीमिंग अप और जीत हमारे ही होगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM। आज का शो होने वाला है फुल बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एवरग्रीन सॉन्ग्स और आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग स्पेशल। बॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं होती, ये इमोशंस होते हैं, यादें होती हैं, म्यूजिक होता है और वो डायलॉग्स जो सीधा दिल तक पहुंच जाता है। आज के शो में हम याद करेंगे लेजेंडरी गाने, अनफॉरगेटेबल डायलॉग्स और उन स्टार्स को जिन्होंने बॉलीवुड को टाइमलेस बनाया। तो तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल सफर के लिए।

Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM में नमस्ते हेलो आदाब के सेगमेंट में हम बात कर रहे थे एवरग्रीन सॉन्ग्स और आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग्स के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड का गोल्डन एरा वो था जब गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं, इमोशन

स्वागत है। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, लता मंगेशकर जी की मेलोडी, किशोर कुमार जी की एनर्जी, ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और कुछ गाने तो ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते। दोस्तों, 60s और 70s के दौर में जब मोहब्बत आंखों से शुरू होती थी और गानों से खत्म, तो राजेश खन्ना जी की ये गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और जब भी प्यार की बात आती है तो एक गाना खुद ब खुद होठों पे ही आ जाता है, वो है लग जा गले। तो चलिए सुनते हैं इस मास्टर पीस को।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेलकम बैक लिजनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM इन द स्टूडियो क्लॉक. टाइम इज पासिंग बाय 12:47. सो हाँ, हम बात कर रहे थे एवर ग्रीन सॉन्ग्स और आइकॉनिक बॉलीवुड डायलॉग्स के बारे में. तो हाँ दोस्तों, बॉलीवुड और रोमांस की बात हो और शाहरुख खान का नाम ना आए, इम्पॉसिबल. SRK ने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दिए, इमोशंस दिए हैं और उनके डायलॉग्स प्योर मैजिक. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. अब थोड़ा एक्शन हो जाए. बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स सिर्फ डायलॉग्स नहीं, एटीट्यूड बन चुके हैं. सनी लियोल का पावरफुल डायलॉग तारीख पे तारीख और रजनीकांत स्टाइल का स्वैग भी कमाल है. बॉलीवुड ने हमें हंसाया भी है और रुलाया भी है. कुछ डायलॉग्स तो सीधा दिल को छू लेती हैं. तो चलिए इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं अगली ट्रैक की ओर.

Well, welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM. तो हाँ, और इसी के साथ हमारा बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया स्पेशल में आज हमने याद किए एवरग्रीन सॉन्ग्स, आइकॉनिक डायलॉग्स और बॉलीवुड के वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे. और ये सिलसिला अभी जारी रहेगी क्योंकि आज का हमारा हेलो रेनबो का टॉपिक है ओल्ड सॉन्ग्स या ट्रेंडिंग बीट्स. तो चलिए थोड़ी देर में हम हमारी हेलो रेनबो के सेगमेंट में कदम रखने वाले हैं. तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM। तो अभी तो हेलो रेनबो का वक्त हो चुका है, तो आज का फोन इन टॉपिक है कि आपको ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है यानी एवरग्रीन सॉन्ग्स या अभी के ट्रेंडिंग बीट्स। भाई मुझे तो क्लासिक सॉन्ग्स तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं भी एक कर्नाटिक वोकलिस्ट हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो क्लासिकल ही सुनती हूँ। तो आप बताइए कि आपको क्या ओल्ड सॉन्ग्स पसंद हैं या ट्रेंडिंग बीट्स। हमसे जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0402323-0030, 0402323-4821, 0402

0: सो वेलकम बैक लिसनर्स, हेलो रेनबो में आप सभी का स्वागत है। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं।
1: मैडम
0: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम, आपका नाम क्या है?
0: जी। मेरा नाम अभिज्ञा है।
1: या मैडम, मेरे को ओल्ड गाने पसंद है, इसके बाद 2000 के भी गाने पसंद है।
0: जी
1: अच्छा टॉपिक है, अभी एक गाना लगा सकते?
0: जी
1: पुराना ओल्ड गाना, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, ये गाने की
0: जी हम कोशिश करेंगे।
1: ठीक ठीक है,
0: जी
1: अगर वो नहीं तो एक नया गाना लगाते हैं
0: जी जी
1: वो
0: जरूर
1: 2000 का।
0: जी जरूर
1: ठीक है,
0: जी,
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद। तो चलिए हम सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक। हेलो रेनबो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे अगली कॉलर को की हेलो हेलो
2: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी।
1: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
2: जी शेर खान बोल रहा हूँ, तलाब कट्टा अमन नगर से।
1: जी हाँ, आपका स्वागत है हेलो रेनबो में। जी आज का टॉपिक आपने सुना है?
2: जी पहले तो सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, सबको आपको मेरा प्यार भरा सलाम आदाब, और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
1: जी
2: मैं ब्लाइंड हूँ मैडम जी, और मुझे जो है तो पुराने दौर के ही गाने पसंद है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डी। तो पुराने गानों में इतना अच्छा बेहतर मैसेज मिलता था, ऐसा लगता है पुराने गाने सुनते हैं तो कोई कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शायद ये हमारे ही ऊपर सूट हो रहा है, बोलते ऐसे लग जाते पुराने गीत जो होते हैं तो।
1: जी
2: वो 60, 50, 70 और 90 तक पसंद है मुझे। 90 के बाद से तो बाद में मेरे गाने कुछ समझ में नहीं आते, तो पुराने ही गानों का बहुत अच्छा लगता है, पुराने गानों का शौक है मुझे। और आप शो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों मैडम को भी मेरा प्यार भरा आदाब है।
1: जी धन्यवाद।
2: और एक गाने की रिक्वेस्ट है, अगर आप ढूंढ के कर दिए प्ले तो मेहरबानी होती।
1: जी
2: फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, धर्मेंद्र साहब का, मोहम्मद रफी की आवाज में। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो।
1: जी हम कोशिश करेंगे।
2: जी आप
1: जी धन्यवाद,
2: आप कोशिश कर दिए तो बहुत शुक्रिया।
1: जी धन्यवाद।
2: ओके।
3: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన April 26 నుంచి June 9 వరకు, May 11 నుంచి June 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
4: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
1: FM Rainbow 101.9. వెల్కమ్ బ్యాక్ దోస్తో. హలో హలో तो दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपने सुनाई है, वो है क्या आपको ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है या ट्रेंडिंग बीट्स। आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं 0402323000, 0402323 4821 और 0402970 4715 पर। ये रही आपकी अगली गाना।
5: बरसों बाद निकली हूँ, ऐसा लगता है

0: कि वो किसी और सर्दी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM। तो हेलो रेनबो में हमारा अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जी हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम जी।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: मैं कीर्ति राजकुमार निजामाबाद से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: जी बताइए।
1: मेरे को वोल फिल्म सॉन्ग्स बोले तो बहुत पसंद था मैडम।
0: जी
1: इसमें ये गाना बजाइए, हाथी मेरे साथी सिनेमा में वो
0: जी
1: धुन है उसका, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया रोटी नहीं मिलता। ये बहुत पसंद है मैडम जी,
0: जी
1: ये
0: हम
1: गाना
0: कोशिश
1: बजाइए ना।
0: करेंगे। जी जी
1: ठीक है मैडम,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: जी धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। जी
1: मैं मधुलिका बोलूँ।
0: जी मधुलिका जी, बताइए आज का
1: जी
0: टॉपिक
1: नमस्ते।
0: आप
1: जी
0: आपने सुना है।
1: जी मैडम, वही पुराने सॉन्ग बहुत पसंद है मैडम। आप अच्छा डाले अभी सॉन्ग,
0: जी धन्यवाद।
1: और डालिए छोड़
0: जी
1: दे सारी दुनिया लगाइए मैडम।
0: जी हम कोशिश करेंगे।
1: जी थैंक यू।
0: जी थैंक यू, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सो लेट्स गो इन टू द अनदर ट्रैक।

Rainbow 101.9. So well, दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM. तो हाँ, आज हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना है, जैसे कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के बारे में और वर्ल्ड्स एड डे के बारे में और स्माइलिंग बुद्धा के ऑपरेशन के बारे में जाना है और साथ ही बॉलीवुड गाने की काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने सुने हैं हमने. तो आप सुनते रहिए क्योंकि आपके साथ जुड़ने वाली हैं अगली शो डबल का मीटा में आरजे रेणुका जी. तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड. हियर इज योर नेक्स्ट ट्रैक. FM Rainbow 101.9.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM Rainbow 101.9

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, आज के नैरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे सबसे पहले हरफ ताबिंदा तहरीर होगी सैयदा आसिमा जैदी की।

तो आइए दोस्तों, आगाज पर सुनते हैं हरफ़े ताबिंदा। तहरीर मोहतरमा सैयदा आसिमा जैदी की है, आइए सुने। इस कायनात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा गया है। उसको इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए तौर तरीक़े और उसूल व ज़वाबित बताए गए हैं। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना, दौलत कमाना और ऐश व इशरत नहीं, बल्कि अपने रब्बे कायनात का शुक्र और इसके मखलूक की खिदमत है। एक अक्लमंद इंसान जब कोई काम करता है तो उसके कुछ मकासद और अगराज होते हैं, जिनकी तकमील के लिए वो शब व रोज़ जद्दोजहद करता है, जानी व माली क़ुव्वत सर्फ करता है और उनकी राह में हायल रुकावटों को दूर करता है। अगर कुछ मसाइल व मसाइब दरपेश हों तो इन्हें कंधा पेशानी से बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने मकसद और मिशन से कदम पीछे नहीं हटाता और ना ही लायानी और बेकार चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करता है। एक इंसान जब बिला मकसद कोई काम नहीं करता तो क्या आपने इस वसी व अरीस कायनात में कभी गौर किया कि अल्लाह ने यह वसी व अरीस कायनात बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाई होगी? हर शय किसी ख़ास मकसद के तख्लीक तो नहीं की गई होगी। हर शय ख़ास हदफ व मकसद के तहत वजूद में आई है। ये चमकता हुआ चांद, रोशन सूरज, ऊंचे नीलगुं आसमान, चौड़ी चकली ज़मीन, ये हरे भरे दरख्त, फैले हुए पहाड़, चरिंद परिंद, तालाब व समंदर और भी अनगिनत चीज़ें जिनसे खुदा ने कायनात को सजाया और बसाया है, इसका क्या मकसद और गर्ज है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? यह हैरतअंगेज जिस्मानी साख, दिमाग और मैदे का पेचीदा निज़ाम, आँख, कान, नाक, होंठ, जबान और दीगर आज़ा की मुनासिब तख्लीक किसने और क्यों कर की? क्या ये सारा निज़ाम ऐसे ही वजूद में आ गया? इसका क्या मकसद और गर्ज हो सकता है? ये और इस किस्म के बहुत से सवालात पर गौर किया जाए कि सारी कायनात को ऊपर वाले ने इंसान के नफ़े के लिए बनाया। अगर किसी में ज़ाहिरी तौर पर ज़रर का पहलू नज़र आए तो भी यकीन करना चाहिए कि इसमें भी इंसान का नफ़ा पोशीदा है। हमारी अक़ल इसके इदराक से कासिर है। बहरहाल दुनिया की तमाम चीज़ें इंसानी खिदमत और इसके नफ़ा रसानी के लिए है। ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद ना हो, यूं ही है जैसे एक जिस्म हो जिसमें रूह ना हो, या एक काफिला हो जिसकी कोई मंजिल ना हो। ज़िंदगी अगर ख़त्म हो जाए, इसका निशान तक मिट जाए, तब भी नाम सलामत रहे। इंसान की मिसाल उस दरख्त की मानिंद है जो साया भी मुहैया करता है और फल फूल भी देता है, खुद झुलसता है मगर इसके साये में चरिंद परिंद और मुसाफिर अपनी थकन उतारते और सस्ताते हैं, और खुद पत्थर खाता है मगर फल और साये से महरूम नहीं होता, अपनी सरिश्त तब्दील नहीं कर सकता। हरफ़ ताबिंदा अभी आपने सुना, तहरीर मोहतरमा सैयदा आसिमा ज़ैदी की थी।

0: चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं इंसानी जिस्म एक लेबॉरेटरी। इस मौजू पर मोहतरमा फहमीदा फहमोश से तकरीर।
1: इंसानी जिस्म एक चलती फिरती लेबॉरेटरी।

दोस्तों, हम रोजाना नई गाड़ियों, स्मार्टफोन्स और रोबोट्स की बातें करते हैं ना, लेकिन क्या कभी आपने उस मशीन पर गौर किया है जिसे हम इंसानी जिस्म कहते हैं? अगर सच कहूँ तो इससे ज्यादा पेचीदा और परफेक्ट मशीन आज तक दुनिया में नहीं बनी। आज हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या जादू हो रहा है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हेडक्वार्टर यानी इंसानी दिमाग की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ 20 वॉट बिजली इस्तेमाल करता है? इतनी बिजली जिससे एक छोटा सा बल्ब जल सके, लेकिन इस कम बिजली में ये वो काम कर जाता है जो दुनिया का बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसीलिए दिमाग को सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर कहा गया है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हर सेकंड में लाखों सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, फौरन दिमाग को पता चलने और हाथ पीछे हटाने में सेकंड का हजारवा हिस्सा लगता है। ये स्पीड किसी भी फाइटर जेट से ज्यादा तेज है। दिल और खून की गर्दिश की अगर हम बात करें, तो अब जरा अपने सीने पर हाथ रखें। ये जो धक धक आप सुन रहे हैं, ये आपके जिस्म का सबसे मेहनती पंप है। आपका दिल एक दिन में तकरीबन 1 लाख बार धड़कता है। और दिलचस्प बात सुने, एक बालिग इंसान के जिस्म की तमाम खून की रगों को निकाल कर एक लंबी लाइन में जोड़ दें, तो वो इतनी लंबी होंगी कि जमीन के गिर्द 2-2.5 चक्कर लग जाएं। जी हाँ, तकरीबन 1 लाख किलोमीटर लंबी रगें हमारे छोटे से जिस्म में समाई हुई है। ये रगें हर वक्त हमारे जिस्म के हर कोने तक खुराक और ऑक्सीजन पहुंचा रही है। चलें अब थोड़ी बात करते हैं हमारे ढांचे की। क्या आपको मालूम है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और बड़े होने तक सिर्फ 206 हड्डियां बाकी रह जाती है। हमारी रान की हड्डी फेमर कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। और जनाब, आपका जिस्म सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं, इसके पास अपनी खुद की आर्मी भी है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हर लम्हा लाखों जरासीम आप पर हमला करते हैं, लेकिन आपके वाइट ब्लड सेल्स सिपाहियों की तरह उनसे लड़ते हैं और आपको बीमार होने से बचाते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता और अंदर जंग जीती जा चुकी होती है।

अच्छा दोस्तों, अब जरा अपनी आंखों के बारे में सोचें। क्या आपको मालूम है कि इंसानी आंख तकरीबन 1 करोड़

मेदी और खुराक का जो सफर है उसके बारे में अब जरा बात हो जाए। इस पिज्जा या बिरयानी की जो आपने अभी खाई होगी, जैसे ही निवाला आपके मुंह में जाता है, साइंस का एक लंबा सफर शुरू हो जाता है। हमारे मेदे यानी स्टमक में एक ऐसा एसिड यानी तेजाब होता है जो धात यानी स्टील को भी पिघला सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन परेशान ना हो, ये तेजाब आपके मैदे को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि कुदरत ने मैदे के अंदर एक खास हिफाजती दीवार बनाई हुई है। ये मशीनरी 24 घंटे काम करती है ताकि आपको तवानाई मिल सके और आप दौड़ भाग सके। अब चंद हकायक की हम बात करें। इंसान की छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा होती है। हमारी आंख का लेंस दुनिया के बेहतरीन कैमरे से भी ज्यादा तेज फोकस करता है। इंसान के फिंगरप्रिंट्स की तरह हर इंसान की जुबान का निशान भी अलग होता है। दोस्तों, आज हमने अपने जिस्म के अंदर का वो सफर किया जो शायद हम रोजाना महसूस नहीं करते। दिमाग की बिजली से लेकर दिल के पंप, आंखों के मेगा पिक्सल्स और मैदे के तेजाब तक हमने देखा कि हम खुद एक चलता फिरता साइंसी मौजजा है।

सच तो ये है कि इन साइंस सिर्फ लेबोरेटरियों या किताबों में नहीं होती, ये हमारे हर सांस में, हमारी हर धड़कन में मौजूद है। अगर हम सिर्फ अपने आप को ही गौर से देख लें तो हमें कायनात की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग समझ आ जाएंगी।

तो दोस्तों, ये थी हमारी अजनबी सी दिखने वाली लेकिन अपनी ही दुनिया। सच तो ये है कि हम खुद एक चलता फिरता मोजज़ा है। अपने जिस्म का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और इस अजीम तख़लीक़ पर शुक्र अदा करें।

तेरी जीस्त संवर जाएगी, हर सांस में खुशबू सी बिखर जाएगी, याद उसकी जो महकेगी मकाने दिल में, रहमत तेरे आंगन में उतर जाएगी, रहमत तेरे आंगन में उतर जाएगी। दूसरी रुबाई इस तरह है कि सूखी हुई शाखों को शजर कहते हैं, सूखी हुई शाखों को शजर कहते हैं, जर्रा

तेरी जीस्त संवर जाएगी, हर सांस में खुशबू सी बिखर जाएगी, याद उसकी जो महकेगी मकाने दिल में, रहमत तेरे आंगन में उतर जाएगी, रहमत तेरे आंगन में उतर जाएगी। दूसरी रुबाई इस तरह है कि सूखी हुई शाखों को शजर कहते हैं, सूखी हुई शाखों को शजर कहते हैं, ज़र्रात को भी शम्स व ख़मर कहते हैं, किस दर्जा है मजरूह बसारत उनकी, छाई हुई जुल्मत को सहर कहते हैं, छाई हुई जुल्मत को सहर कहते हैं। रुबाई के ताल्लुक से रुबाई पेश कर रहा हूँ कि कहना हो तो फुर्सत में रुबाई कहिए, कहना हो तो फुर्सत में रुबाई कहिए, अल्फाज की जिद्दत में रुबाई कहिए, है नाज तबीयत की रवानी पे अगर खयाम की सुन्नत में रुबाई कहिए, है नाज तबीयत की रवानी पे अगर खयाम की सुन्नत में रुबाई कहिए। जौलानी तबीयत की दिखाने वाला, जौलानी तबीयत की दिखाने वाला, मानो के नए फूल खिलाने वाला, होता है वो सुर्ख रू अदब में ताहिर, होता है वो सुर्ख रू अदब में ताहिर, लफ्ज़ों को लहू दे के सजाने वाला, लफ्ज़ों को लहू दे के सजाने वाला। गालिब की ज़मीन में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतला इस तरह है कि जिंदगानी का मेरी ख़त्म सफ़र होने तक, जिंदगानी का मेरी ख़त्म सफ़र होने तक, वो ना आएगा शबे गम की सहर होने तक, वो ना आएगा शबे गम की सहर होने तक। ये शेर सुनिएगा, तुख़म को चाहिए एक उम्र शजर होने तक, तुख़म को चाहिए एक उम्र शजर होने तक, कौन जी पाएगा शाखों पे समर होने तक, कौन जी पाएगा शाखों पे समर होने तक। किसी सूरत में कभी शेर तराशी न रुके, किसी सूरत में कभी शेर तराशी न रुके, शायरो दस्ते हुनर खून में तर होने तक, शायरो दस्ते हुनर खून में तर होने तक। ये शेर देखिए, गज़ल का शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, उसकी आमद का कोई वक्त मुकर्रर तो नहीं, उसकी आमद का कोई वक्त मुकर्रर तो नहीं, राह में बैठे रहो उसका गुज़र होने तक, राह में बैठे रहो उसका गुज़र होने तक। मेरे हमदर्द हो सच्चे तो नसीहत न करो, मेरे हमदर्द हो सच्चे तो नसीहत न करो, मुंदमिल चारा करो ज़ख्म जिगर होने तक, मुंदमिल चारा करो ज़ख्म जिगर होने तक। तीर अल्फाज के तूफ़ान उठा देते हैं, तीर अल्फाज के तूफ़ान उठा देते हैं, देर लगती नहीं लहरों को भंवर होने तक, देर लगती नहीं लहरों को भंवर होने तक। देखिए, सात गालिब के तगाफुल का ज़माना भी गया, सात गालिब के तगाफुल का ज़माना भी गया, अब तो पल भी न लगे उसको ख़बर होने तक, अब तो पल भी न लगे उसको ख़बर होने तक। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ब्त की शान है मेराज है गम की आए दोल, गम की आए दिल, ज़ब्त की शान है मेराज है गम की आए दिल, अश्क ठहरे रहें पलकों पे गौहर होने तक, अश्क ठहरे रहें पलकों पे गौहर होने तक। मक्ता इस तरह है कि सुरखरु फ़न कभी यूं ही नहीं होता ताहिर, सुरखरु फ़न कभी यूं ही नहीं होता ताहिर, खून देते रहो तथहीरे हुनर होने तक, खून देते रहो तथहीरे हुनर होने तक। एक ख़ता और एक छोटी सी नज़्म पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। कि ख़ता इस तरह है, उनको हालात का अंदाज़ा नहीं, सबसे कटकर जो परे बैठे हैं, उनको हालात का अंदाज़ा नहीं, सबसे कटकर जो परे बैठे हैं, घर के अतराफ़ हैं शोले लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, घर के अतराफ़ हैं शोले लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक नज़म है, छोटी सी मुख्तसर सी नज़म, इस नज़म का उन्वान है खुशबू। देखिए कि असर हाजिर में मोमिनों का वजूद, असर हाजिर में मोमिनों का वजूद, एक खुशबू है सिर्फ खुशबू है, आज भी है न कल भी था मुमकिन, आज भी है

नवाजिश आपकी मुझ पर जो पायहम होती जाती है, नवाजिश आपकी मुझ पर जो पायहम होती जाती है, नमक पाशी मेरे ज़ख्मों का मरहम होती जाती है, मेरे नमक पाशी मेरे ज़ख्मों का मरहम होती जाती है, मेरी जानिब तवज्जे आपकी कम होती जाती है, मेरी जानिब तवज्जे आपकी कम होती जाती है, मेरे दिल पर मुसलसल यूँ रिशे गम होती जाती है। अदब में बेमुआनी तजुर्बे होते जाते हैं, अदब में बेमुआनी तजुर्बे जब होते जाते हैं, गज़ल की मानवियत और मुबहम होती जाती है, गज़ल की मानवियत और मुबहम होती जाती है। देखिए शेर, निकल पड़ते हैं तारे अपनी झूठी रोशनी लेकर, निकल पड़ते हैं तारे अपनी झूठी रोशनी लेकर, ज़िया जब डूबते सूरज की मधम होती जाती है, ज़िया जब डूबते सूरज की मधम होती जाती है। गज़ल का शेर अर्ज़ है कि मेरी भीगी हुई पलकों पे नज़रें टिक गईं उसकी, मेरी भीगी हुई पलकों पे नज़रें टिक गईं उसकी, फुवारों से ज़मीन संग भी नम होती जाती है, फुवारों से ज़मीन संग भी नम होती जाती है। मेरी हर सांस में तू है, मेरी बीनाई में तू है, मेरी हर सांस में तू है, मेरी बीनाई में तू है, तेरी हस्ती मेरी हस्ती में मुदगम होती जाती है, तेरी हस्ती मेरी हस्ती में मुदगम होती जाती है। अदब गाहों में मेरी फ़िक्र के गुलशन महकते हैं, अदब गाहों में मेरी फ़िक्र के गुलशन महकते हैं, तेरी खुशबू मेरी गज़लों में मुदगम होती जाती है, तेरी खुशबू मेरी गज़लों में मुदगम होती जाती है। ये वक्त नज़ा है ताहिर घड़ी है उससे मिलने की, ये वक्त नज़ा है ताहिर घड़ी है उससे मिलने की, वही दिल है मगर आवाज़ मध्यम होती जाती है, वही दिल है मगर आवाज़ मध्यम होती जाती है। एक गज़ल मुश्किल काफिया रदीफ़ में अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए मतला इस तरह है, बंजर ज़मीन शेर से जब वास्ता पड़ा, बंजर ज़मीन शेर से जब वास्ता पड़ा, खूने जिगर से फ़िक्र का हल जोतना पड़ा, खूने जिगर से फ़िक्र का हल जोतना पड़ा, मेरी नज़र में है वही इंसान गिरा पड़ा, मेरी नज़र में है वही इंसान गिरा पड़ा, ख्वाब ऊँचे देखता है जो घर में पड़ा पड़ा, ख्वाब ऊँचे देखता है जो घर में पड़ा पड़ा, बेटों की सर्द मेहरी से जब वास्ता पड़ा, बेटों की सर्द मेहरी से जब वास्ता पड़ा, अपने ही घर में अपना पता पूछना पड़ा, अपने ही घर में अपना पता पूछना पड़ा, बेटों की सर्द मेहरी से जब वास्ता पड़ा, अपने ही घर में अपना पता पूछना पड़ा, पथराव करने वालों की तस्कीन के लिए, पथराव करने वालों की तस्कीन के लिए, फलदार शाख बन के मुझे टूटना पड़ा, फलदार शाख बन के मुझे टूटना पड़ा, हिम्मत की वादियों में ख़दम मैंने जब रखा। शेर सुनिए, हिम्मत की वादियों में ख़दम मैंने जब रखा, बेनाम हादिसों से मेरा साबिखा पड़ा, बेनाम हादिसों से मेरा साबिखा पड़ा, तब से ख़दम हमारे नहीं हैं ज़मीन पर। ये शेर देखिए, गज़ल का शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। तब से ख़दम हमारे नहीं हैं ज़मीन पर, घर में हमारे जब से ख़दम आपका पड़ा, घर में हमारे जब से ख़दम आपका पड़ा, तब से ख़दम हमारे नहीं हैं ज़मीन पर, घर में हमारे जब से ख़दम आपका पड़ा, बस इतना जानने के लिए चल रही है सांस, बस इतना जानने के लिए चल रही है सांस, कैसे हया तो मौत का ये सिलसिला पड़ा, कैसे हया तो मौत का ये सिलसिला पड़ा, बस इतना जानने के लिए चल रही है सांस, कैसे हया तो मौत का ये सिलसिला पड़ा। मख्तार्स कर रहा हूँ कि ताहिर भी आखरिश अदम आबाद चल दिया, ताहिर भी आखरिश अदम आबाद चल दिया, दरिया सुकून के लिए सागर में जा पड़ा, दरिया सुकून के लिए सागर में जा पड़ा।

दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कभी कभी इंसान को दीवानेपन की तरफ ले जाता है, और ये दीवानापन उस वक्त तक बरकरार रखता है जबकि इश्क की बेचैनी थम न जाए। आइए सुनते हैं इसी दीवानेपन को फिल्म यहूदी में।

फिल्म उमराव जान से लिया गया गीत है, भी आपने सुना दोस्तों। आइए अब सुनते हैं श्री 420 फिल्म से लिया गया ये गीत।

फिल्म श्री 420 से लिया गया गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म सीता और गीता से लिया गया ये गीत। जाते हुए कहते हो कि कयामत को मिलेंगे, क्या खाक कयामत का है गोया कोई दिन और।

नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

दोस्तों आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जा। आइए इस गीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अब सुनते हैं फिल्म साहब बीबी और गुलाम से लिया गया ये गीत।

फिल्म वीर ज़ारा का गीत अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। इसी गीत पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जल्लब खत्म होता है। आइए दोस्तों, नए रंग प्रोग्राम के अगली पेशकश, बल्कि प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है।

यूं तो हर शाम उम्मीदों पे गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। जिंदगी में गम और उदासी आना फितरी बात है, लेकिन मोमिन वो है जो हर हाल में सब्र और उम्मीद का दामन न छोड़े। बाज़ औक़ात आंसू दिल का बोझ हल्का कर देते हैं, मगर इंसान को मायूसी के बजाय अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। हर अंधेरी शाम के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है, और यही रोशन सुबह हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाती है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद लम्हों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व

0: स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। वे श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into Force of Trade and Economic Partnership Agreement, TPA. He underlined that stakeholders on both the sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. Prime Minister Modi urged the business communities of both the countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between India and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. इन अजेंडा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जूली, आवाज है लता मंगेशकर की।

रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, आगाज दास्तान सफर आप ही से हो। ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आग ले लग जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

बीते रिश्ते तलाश करती है, बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। अपनी माजी की जुस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है, खत के पुर्जे तलाश करती है। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेल्ले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो आप पहला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है आ गले लग जा, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह न दे सके, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। तुम जब भी आना अपने साथ ले आना

समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अवतार, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अमर।

जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जैसे जीवित है याद गौरैया की उसके जाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है मन में खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, और ठीक वैसे ही याद करना तुम मुझे, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काला सोना, आवाज है आशा भोसले की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो, और फिर से वो मिट्टी गूंथ लो। फिर से दो बुत बनाओ, तुम में कुछ मैं और मुझ में कुछ तुम रह जाओ, और मुझ में कुछ तुम रह जाओ।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें

कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। दिखाई पड़े पूर्व में जो

सितारे वही आ गए ठीक ऊपर हमारे, क्षितिज पश्चिमी है बुलाता उन्हें हम, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। इधर तुम उधर, तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, उधर तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, हे राम कितनी कड़ी बीच दुनिया। किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है कलाकार।

बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की छाते में सिमट कर आ गई। बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की छाते में सिमट कर आ गई। कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को, कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। और आज सुरमई में जो आप अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज है सोनू निगम की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बॉबी।

कुछ कदम हम चले, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। फर्क बस इतना रहा, फर्क बस इतना रहा, हम चले तो फासला घटता गया। हम चले तो फासला घटता गया, तुम चले तो फासला बढ़ता गया। तुम चले तो फासला बढ़ता गया। कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाय की अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ फिल्म का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई

0: Temple Gold Reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. And that is the end of this news bulletin.
1: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। जमाना कहता है इश्क जिसे, तुमसे वही बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, सफर पर चलते चलते ही कब कोई हमसफर मिल जाता है और फिर दुनिया, जिंदगी, सब कुछ बदल जाता है।

मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में फिल्म 12 o'clock से ये गीत आपने सुना। इरादा न था मोहब्बत करने का, इरादा न था मोहब्बत करने का, मगर आपको देखा तो इरादा बदल गया। सोचा था अब कभी किसी को आंख भर के नहीं देखेंगे, आपको देखा तो नज़रों ने भी धोखा दे दिया।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म आंधी और तूफान से ये गीत आपने सुना। राह में खड़े होकर तेरा इंतज़ार किया है, राह में खड़े होकर तेरा इंतज़ार किया है।

ओ मेरे सनम, तुमसे उतना ही प्यार किया है, ना कोई शिकायत है ना कोई गिला तुमसे, बस हर लम्हा तेरे होने का एहसास किया है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संगम से ये गीत आपने अभी सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आंधी से।

तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तुम नहीं कोई नहीं कसम खाई है मैंने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आपकी कसम से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शिकारी से अभी आपने गीत सुना। तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं, तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं कि हर धड़कन में तेरा ही नाम बसा बैठे हैं। अब कोई आरजू इस दिल में बाकी नहीं, जब से तुझे प्यार करने की वजह पा बैठे हैं। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में आइए सुनते हैं अप्रैल फूल से ये गीत।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत आपने अभी सुना। हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, मगर उनकी एक नजर मिली और वही मेरा ठिकाना हो गया। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रंगोली से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मस्ताना से ये गीत आप अभी सुन रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंच

0: श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ विपक्षी वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की आशंका है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष P. Abraham।

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में अगर मिलजुल के सब कुछ किया जाए तो कितना आनंदमय जीवन हो जाता है, परंतु आज के समय में कोई साथ चलना ही नहीं चाहता और ना ही कुछ बांटना चाहता है। कोशिश कीजिए दोस्तों किसी के साथ चलने की और प्यार बांटने की, बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म तकदीर से।

दोस्तों, हाथों की लकीरें और किस्मत यानी तकदीर का तो हमारी जिंदगी में बड़ा हाथ होता है, पर अगर हम अपने कर्म एक प्लानिंग के साथ करना शुरू करें तो देखना जिंदगी ही बदल जाएगी।

अनवर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म विधाता से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, तदबीर से हम बिगड़े हुए काम भी संवार सकते हैं और साथ में अगर अपने पर भरोसा हो तो फिर सोने पे सुहागा।

गीता दत्त की आवाज में फिल्मबाजी से ये गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से।

0: दोस्तों, गम और खुशी, धूप और छांव, सच और झूठ के बीच में चलने का नाम ही जिंदगी है। आइए सुनते हैं चलती का नाम जिंदगी से ये गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म आराधना से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यारी जो है हमें जान से प्यारी, जो हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना देती है और जिसके साथ हम अपना सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

साजन बिन सुहागन फिल्म से येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है और एक जंग की तरह हम जिंदगी भर समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं। पर समस्याओं को दोस्तों सुलझाना तो है ही, तो क्यों ना हंस के ही सुलझा लिया जाए।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं मुनीम जी की फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

बिल्कुल दोस्तों, जीवन के सफ़र में मिलते हैं बिछड़ जाने को, और अब हमारा भी बिछड़ने का वक्त आ गया है। अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपने दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी

0: के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू चलने की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory.

सुबह की 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना ससदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में हमेशा मन यही करता है कि सबसे पहले प्रभु का सिमरन किया जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

कोयल की मधुर ध्वनि कानों में जरूर सुनी होगी आपने। उसको सुनकर मन आनंदित हो उठता है और इसी से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मीठे शब्दों का दूसरे पर कितना असर पड़ जाता है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सरगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम है, और उसी के बीच में हमें अपनी मस्ती में जीना है। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राम और श्याम से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।